कर जा। असिटी पकिया सम पकिया फा पकी बोली जमानो बंटा लुन्न देखे बेबदा चेदने आलाम सिभी जंकें दो बलादिन दो रखन कमिन्ना।